0: ओ ता तिंगवे ता जमार ता तिंगवे इन ना चेतुन जबजे लबार या चिंगे योमारी ला न्यनजि लेगु द यप तिजुले चितो चिंगे योमाशी इने ता ता चेतुन लि जबार या चिंगे मंगुदु न्यनजि लेगु द यलुए चितो चिंगे दुआ चेजा तपसी दी पेंतो माशी
1: चेतों जाजी
0: ओ तांगा लेग दी तिंग यप चेतु मिंदु
1: चेतों जाजी तांगा यु जे मिगु दी जुप तुरो चेना 근데 세우이 매 소소성 떠다